निरन पानी पग पग रे घर सर सा मा कर सदा निधर रे सा कर सा पग निन पर रे सा कर सा पग पग निन पर रे सा निधा पग रे।